0: हराया गया था जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था और देश में एक ही उपचुनाव था। वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3 लाइन व्हिप अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
1: आज एक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ है सुखेंदु शेखर राय। दादा, आपने पहले दिन जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन कहा था और लोग भी छोड़ेंगे, तो आपकी बात तो लगता है सही साबित हो रही है।
2: मैंने तो पहले ही बोल चुका था 10 दिन पहले कि पार्टी उठ जाएगा, जैसे कि विधानसभा में हुआ हमारा बंगाल में, 80 चुनाव में जीता, 64 चला गया और उसका असर पड़ा लोकसभा में, अभी 22 मेंबर चले गए। तो मैंने तो पहले ही तय किया था कि मैं भी छोड़ दूंगा, पार्टी भी छोड़ दूंगा और राज्यसभा भी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, मैंने इस्तीफा दिया था 8 तारीख को। 10 तारीख को मतलब सुष्मिता देव, आज प्रकाश जी की बारी, अब कल किसका बारी है, परसों किसका बारी है, देखते रहिए।
1: तो आपको लगता है कि अभी और लोग भी इसमें से निकलेंगे?
2: हाँ,
1: इस जहाज को और लोग छोड़ेंगे?
2: जरूर, जहाज तो डूब गया, तो जान बचाने के लिए तो लोग तो निकलने का कोशिश करेगा ना, निकलने का कोशिश करेगा।
1: तो और लोग भी निकलेंगे अभी,
2: जो लोग डूबते हुए जहाज में रह जाएगा वो डूब के मरेगा।
3: Let's bring you more updates coming in at this hour. While the political crisis within the Trinamool Congress is now intersecting with a legal battle. In the alleged fake signature case linked to the LOP controversy, Abhishek appeared in fact before the CID before skipping the 3 earlier summons, with his questioning even stretching late into the night. His appearance came after the Calcutta High Court granted him interim protection from arrest while directing him to cooperate with the investigation. In court, Abhishek's defense was that the decision to elect the LOP was taken by the MLAs and that he merely forwarded the communication to the Speaker in his capacity as the party's General Secretary.
4: कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं, ये बात तो ऋजु दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दोस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया, पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उसके उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे।
3: Let's move on to more updates coming in at this hour. While a political storm has erupted over Rahul Gandhi's latest attack on the Prime Minister Narendra Modi. Rahul Gandhi's learned to have said that people across the country, from students to farmers to the poor, feel that the Prime Minister has ruined them, linking the sentiment to issues such as paper leaks, unemployment and economic distress. The Congress has defended the remarks, saying that they reflect the growing frustration, while party leaders have doubled down on the charge, saying that the government has failed India's youth and farmers. The Bharatiya Janata Party has hit back sharply, accusing Rahul Gandhi of fear-mongering, spreading propaganda and encouraging political unrest in the country. While the war of words has now escalated into a full-blown political showdown, with both sides trading sharp attacks over Rahul Gandhi's remarks.
5: गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, क्या वो कहना चाहते हैं?
6: अरे भाई, पेपर लीक जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 79 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार पेपर कैंसिल हुआ है।

0: गरीब लोगों के बच्चे जाके होटलों में रह के तीन तीन दिन चार चार दिन रह के पैसा खर्च करके रहते, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनका नहीं होता है। उनके भविष्य से ये खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो करते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, उनके उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। तो कौन दोषी है इसके लिए? कांग्रेस दोषी है? अपोजिशन दोषी है? कौन दोषी है? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? कौन ओन करते हैं वो सभी? वो सेंटर्स के मालिक कौन है? ये एजेंसीज जो कंडक्ट करते हैं ये कौन है? ये जो कोरियर जो लेके जाता है क्वेश्चन पेपर ये कौन है?
1: हाउ कांग्रेस इज प्लानिंग टू कॉर्नर गवर्नमेंट ऑन दिस इशू सर?
0: सी, इट इज वेरी क्लियर दैट नरेंद्र मोदी जी एंड धर्मेंद्र प्रधान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम फॉर दिस। वी हैव आस्क्ड फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट जस्ट कांग्रेस पार्टी और एनी अपोजिशन पार्टी।
2: आप गांव के आदमी हैं और बेसिक रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से परेशानी होती है तो लोग यह बात जरूर कहते हैं कि इनका कारण हम मर गए। आप बताइए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर डांका डाला गया है, लाखों परीक्षार्थी नीट के पेपर, सीबीएसई के पेपर से हताशा और निराशा में जी रहे हैं, 10 साल में 89 पेपर लीक होना, क्या ये नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं है? नौजवान और छात्रों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? उनके भविष्य को मारा है कि नहीं मारा है? सरकार किसकी है? किसान आज घंटों लाइन में लग रहा है डीएपी और यूरिया के लिए। किसानों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मोदी ने किसान, नौजवान और गरीबों को मरवा दिया।
3: राहुल गांधी स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एक्सपोजेज हिज पॉलिटिकल एनार्किस्ट अप्रोच एंड एक्सपोजेज दैट ही इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल एनार्किस्ट। ही इज अनहैप्पी दैट इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ग्रोइंग विद 7% ग्रोथ रेट। ही वांट्स टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन दिस कंट्री। ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव सीन थ्रू राहुल गांधीज एजेंडा एंड टूलकिट। हिज रीसेंट स्टेटमेंट फर्दर एक्सपोजेज दैट राहुल हेट्स इंडिया, राहुल हेट्स इंडिया स्टेबिलिटी एंड राहुल हेट्स इंडियाज डेमोक्रेसी।
4: जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कहा है मोदी ने मरवा दिया। ये वही लोग हैं जो मोदी जी को गालियां देते हैं, 150 से ज्यादा गालियां दी है, मोदी की मौत होगी, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, लाठी डंडे से मारो मोदी को, ये कहने के बाद जहरीला सांप है मोदी, ये कहने के बाद अब एक और ऐसा बयान। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और पैनिक क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, यही इनका काम है। तो ये कोविड वैक्सीन पर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इकॉनमी को डेड बोलकर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पैनिक क्रिएट करते, कहते डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंटरवीन होना चाहिए यूएस यूके के द्वारा, और अब किस प्रकार से आग लगा देंगे, केरोसिन छिड़क दिया है, ये बयान देने के बाद सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते, इस प्रकार का बयान देने के बाद अब राहुल गांधी फिर से फियर मॉन्गर कर रहे हैं।
5: We're checking some breaking news coming in at this hour. We're understanding that comedian Pranit Moore has now been booked in his rupees 370 biryani remark row. That's right, trouble seems to mount for the comedian Pranit Moore after a case has been filed against him and as well as Himanshu Jagra. That's the latest update that we have for you at this hour. Remember that this was a controversy that erupted during a comedy show. The comedian for which was Pranit Moore, he's been booked in the rupees 370 biryani remark row, a remark that was in fact making the rounds on social media as well for its nature that it was distasteful. Trouble seems to be mounting for the comedian as he too has in fact found himself in fact a problem over here, as there's been a case that's been filed against him as well as Himanshu Jagra. My colleague Sujata joins us on the broadcast. Sujata, of course, an important update coming in. The comedian Pranit Moore has been booked in the controversial remark case. Help us understand, what are the charges that he's currently facing?
6: Well, certainly, and problems keep on mounting, has been mounted for comedian Pranit Moore and Himanshu Jagra for the remarks that were made during a concert show. And under Section 370, they have been booked for the obscene and objectionable remarks that were made against the dignity of women, is what has been mentioned in the FIR. Not just the FIR, but also on social media, we see that the anger has been mounting up for the comedian for the remarks that were made. And also, the 370 biryani joke is now all over. But not only that, the police is also trying to investigate at the other jokes and the other sequences of the show, so that action, if needs to be initiated, any other remark that was made, that could also be done. So, because a clip is now getting viral on social media.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन
1: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7 द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी

0: Gandhi is that he himself is fighting with the all the state regional parties and getting a lesser number of seats in assembly segment and parliament. So they should know that we should support regional parties in the state governments, and then only all these regional parties will support them for the Congress to capture power in the center. That they don't know. That is the problem with Rahul Gandhi.
1: अरे कैसी बात कर रहा है और कैसे होना चाहिए? मरवा दिया, फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? मरवा तो दिया ही, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बाहर जो लोग रोजगार के अंदर गए वो परेशान है। आप स्थिति समझिए ना, क्या है मिडिल ईस्ट की जंग से किसको नुकसान हो रहा है, कितने लोग मिडिल ईस्ट में है, देश की अर्थव्यवस्था को चूल हिला दिया आपने, देश की अर्थव्यवस्था की चूल हिल गई है।
2: आप गांव के आदमी हैं और बेसिक रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ों से परेशानी होती है तो लोग यह बात जरूर कहते हैं कि इनका कारण हम मर गए नहीं। आप बताइए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर डांका डाला गया है, लाखों परीक्षार्थी नीट के पेपर, सीबीएसई के पेपर से हताशा और निराशा में जी रहे हैं, 10 साल में 89 पेपर लीक होना, क्या ये नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा नहीं है? नौजवान और छात्रों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? उनके भविष्य को मारा है कि नहीं मारा है? सरकार किसकी है? किसान आज घंटों लाइन में लग रहा है डीएपी और यूरिया के लिए। किसानों को मोदी ने मरवाया है कि नहीं मरवाया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, मोदी ने किसान, नौजवान और गरीबों को मरवा दिया।
3: राहुल गांधी's स्टेटमेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एक्सपोजेज हिज पॉलिटिकल एनार्किस्ट अप्रोच एंड एक्सपोजेज दैट ही इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल एनार्किस्ट। ही इज अनहैप्पी दैट इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ग्रोइंग विद 7% ग्रोथ रेट। ही वांट्स टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन दिस कंट्री। ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव सीन थ्रू राहुल गांधी's एजेंडा एंड टूलकिट। हिज रीसेंट स्टेटमेंट फर्दर एक्सपोजेज दैट राहुल हेट्स इंडिया, राहुल हेट्स इंडिया स्टेबिलिटी एंड राहुल हेट्स इंडियाज डेमोक्रेसी।
4: जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कहा है मोदी ने मरवा दिया। ये वही लोग हैं जो मोदी जी को गालियां देते हैं, 150 से ज्यादा गालियां दी है, मोदी की मौत होगी, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, लाठी डंडे से मारो मोदी को, ये कहने के बाद जहरीला सांप है मोदी, ये कहने के बाद अब एक और ऐसा बयान। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और पैनिक क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, यही इनका काम है। तो ये कोविड वैक्सीन पर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इकॉनमी को डेड बोलकर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे पैनिक क्रिएट करते, कहते डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इंटरवीन होना चाहिए यूएस यूके के द्वारा, और अब किस प्रकार से आग लगा देंगे, केरोसिन छिड़क दिया है, ये बयान देने के बाद सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते, इस प्रकार का बयान देने के बाद अब राहुल गांधी फिर से फियर मॉन्गर कर रहे हैं।
5: अरे भाई, पेपर लीक जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? 79 बार पेपर लीक हुआ है, 48 बार पेपर कैंसिल हुआ है, तो किसके वजह से हुआ है? कौन एजेंसीज हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर्स किसके हैं? ये कोरियर एजेंसीज किसके हैं? ये सब इन्हीं के लोग से जुड़े हुए हैं। तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी है ना, तो मोदी जी ने मरवा दिए पूरे सबको।
6: बीजेपी लैंग्वेज पे आपत्ति जता रही है सर, भाषा।
5: अरे अभी जो बच्चों को आपने जो है, जो बच्चे गरीब लोगों के बच्चे जाके होटलों में रह के 3-3 दिन 4-4 दिन रह के पैसा खर्च करके रहते, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उनका नहीं होता है, उनके भविष्य से ये खेल रहे हैं, उनकी तैयारी जो करते हैं उस पर पानी फेर रहे हैं, उनके उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, तो कौन दोषी है इसके लिए? कांग्रेस दोषी है?

0: Exactly 1 year ago, the sky over Ahmedabad became a nightmare that would forever haunt several lives. Hundreds of lives shattered in a single catastrophic flash. Air India Flight 171 tore through the BJ Medical College hostel complex. The physical scars of the disaster remain etched into the landscape. The gaping hole where the plane entered the building shows the impact of one of India's deadliest aviation disasters. Among the 260 people killed were Rajnikant and Pushpaben Darji, an elderly couple from Kheda who were flying to UK to meet their son. But fate failed this reunion. This was a couple that had never stepped foot outside Ahmedabad before that ill-fated day.
1: उनकी वाइफ थी
2: दोनों कपल कहाँ जा रहे थे वो लोग
1: लंदन घूमने जा रहे थे लड़का इनका वहाँ पे डॉक्टर है तो घूमने बुलाया था पापा आप आ जाओ और उसने टेलरिंग करके दर्जी काम करके डॉक्टर बनाया था उसको घूमने बुलाया था जा ही नहीं सका
3: ऐसी प्रार्थना की बात तो हमें कुछ इसके पास हमें नहीं खुदा ने हमारी बात नहीं सुनी और मेरी बहन भी है और मेरी देवरानी भी हमारी छोटी बहन भगवान को नहीं अच्छा लगा दोनों को साथ ही ले गए
0: गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला was passing by the road near the hostel when the plane crashed. An unscripted moment he never dreamt of happening. The 34-year-old filmmaker went missing after the crash. Family filed missing complaint, cops traced his phone location to the crash site, and then after 8 days, his body was identified through DNA matching.
4: So it's not going to happen that the plane crash will come, my brother. Then, उसके दोस्तों से बात की तो उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बोला कि वो तो निकल गया था यहाँ से उसके बाद मैंने एक मेरा फ्रेंड था उसके पास मैंने लोकेशन निकलाई वो लोकेशन लास्ट पॉइंट आया मेघानी नगर का जो ब्लास्ट से 400-500 मीटर दूर था उसका लोकेशन तो उसने जो ब्लास्ट वाला एरिया था वहाँ से हमने एक्टिवा का इंजन नंबर 26 नंबर उसने निकाला वो साहब ने और वो मैच हो गया
5: हम बाप बेटे जैसे नहीं रहते थे हम दोनों दोस्त जैसे रहते थे कि वो उसकी एक तमन्ना थी कि पापा पहले मैंने नाम कमाना है
0: While victims continue to deal with the pain of losing their loved ones in the June 12, 2025 crash, the chorus of justice grows stronger and the victims are searching for answers. The prelim report released by the Aircraft Accident Investigation Bureau in 2025 has hinted at dual engine shutdown but did not assign blame to any individuals or point to a definitive cause
6: timings unhone diye hain wo timings jo engine kab fail hua uska aur kaise 1 second ke andar dono engine band ho gaye to uska humne khulasa kiya ki wo timing jo technical jo bhi इन्फॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर्स के पास वो उसके तहत नहीं है
0: वन ईयर ऑन द रैकेज मे हैव बीन क्लियर्ड बट द स्कार्स रिमेन एच्ड फॉरएवर ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी
7: लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू द ट्रेजिक इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दैट इन्वॉल्व्स द पलाव फ्लैग्ड वेसल एज वेल थ्री इंडियन सेलर्स इनिशियली रिपोर्टेड मिसिंग वर कंफर्म्ड डेड आफ्टर देयर बॉडीज वर रिकवर्ड एंड आइडेंटिफाइड The deceased have been identified as Aditya Sharma, a deck cadet, Shivanand Chaurasia, an engineer fitter, and chief engineer Patnala Suresh. They were killed after a vessel was attacked by US forces off the coast of Oman earlier this week. And a video has also surfaced showing the Indian crew issuing a distress call after it was hit by a US missile off Oman, saying the ship was on fire.

0: and sinking. Meanwhile, the U.S. Central Command has released a video of this attack, and the Ministry of External Affairs has once again condemned this attack while informing that a strong protest is being lodged through diplomatic channels. But the families, they are grieving. In fact, Shivanand Chaurasia's family was left devastated after they got to know that he was among the three Indian sailors who have been killed, while 23-year-old deck cadet Aditya Sharma's family remains in shock following this tragic incident.
1: ఆఫ్టర్నూన్కి ఇన్ఫామ్ చేశారు, బాడీ రికవర్ చేసి అన్నీని ఇన్ఫామ్ చేయడం అయితే నైట్ ఇన్ఫామ్ చేశారు, ఫాలోఅప్ చేశారు, ఇంటిమేట్ చేశారు, అంతా వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఇన్ఫామ్ చేశారు. సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్దర్గా అతని బాడీ ఏదైతే అక్కడ స్ట్రక్ అయిందో అది నాకు ఇక్కడికి త్రూ మీడియా, త్రూ ఎంబసీ, ఎవరైతే నాకు ఫేవరబుల్గా కొంచెం చేసి అతని బాడీని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కొంచెం లోకల్ అతని నేటివ్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చే ఫేవర్ చేస్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను.
2: जो अपनी सेवाएं अपने देश से बाहर जाकर भी दे रहा था, आज हमारे बीच में नहीं रहे. ना केवल परिवार बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत दुख है इस घटना से, और हमने मांग भी की है विदेश मंत्री जी से और केंद्रीय जो हमारा विभाग है विदेश कार्यालय का, उनसे भी कि वहां पर कंपनी के साथ, वहां की एम्बेसी के साथ, वहां की सरकार के साथ भारतीय दूतावास इस विषय को उठाए और जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस लाए, ताकि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द वापस मिले, ऐसा हमारा प्रयास है.
0: In other news, India's Indus water strategy has sparked a major political and diplomatic reaction across the border. After an exclusive interview by NDTV with Union Water Resources Minister C.R. Patil, that generated strong responses in Pakistan, because Mr. Patil had said India intends to fully utilize its share of Indus waters within the next 1.5 to 2 years, and asserted that not a single drop meant for India would flow to Pakistan. Soon after this, Pakistan's foreign ministry warned that any attempt to restrict water flows could be viewed as an act of war. Islamabad has described its water rights as non-negotiable and also vowed to defend them vigorously, stressing that the Indus River system is essential to their survival. But this exchange has further intensified the Indus waters debate as far as both our countries are concerned.
3: आपके मंत्रालय के पास एक बहुत अहम योजना है. जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकी कार्रवाई की पहलगाम में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो जल स्रोत थे उनको काटने की बात भी कही गई. उसमें एक सिंधु जल समझौता बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, सिंधु नदी पर है. भारत सरकार ने घोषणा की कि अब हम पानी यहाँ का सिंधु का पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, हमारे इलाके से नदी गुजरती है, हम इसको रोकेंगे. कब तक ये पूरी तरह से ज़मीन पर उतर जाएगा कि सिंधु का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाए?
4: देखिए, माननीय मोदी साहब की सरकार ने जो TT थी उसको एवेंस पर रख दिया है. ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर जो अभी तक वहाँ जल संचय की व्यवस्था नहीं थी वो डाइवर्ट करने की भी भौगोलिक स्थिति में थोड़ी मुश्किल है. मगर मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा आपको कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे. उसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है, और ये काम बहुत जल्दी होगा. इसके कारण कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी.
3: जी, तो आज हम जब 8 जून 2026 को बात कर रहे हैं और आप 2 साल का वक्त ले रहे हैं, तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा?
4: बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा.
3: तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा और साथ में हथियार भी छोड़ देगा?
4: वो हम तो हमारे अधिकार का पानी है, हमारे लोगों को चाहिए. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि जहां हमारे यहां किल्लत है वहां पर पानी पहुंचना चाहिए.
3: तो इस खबर से तो पाकिस्तान में खलबली मची आएगी कि 8 जून 2026 के बाद सिंधु का पानी जाना पाकिस्तान में बंद हो जाएगा.
4: 8 जून 2028 जी.
5: As stated by our at the top leadership level by Pakistan, any such act would be treated with utmost seriousness and could possibly amount an act of war under Article 51 of the UN Charter. Every state retains the inherent right to self-defense. Pakistan will take all necessary measures to safeguard its economy and its vital national interests. And

0: First, breaking updates. Maharashtra Congress leader Nana Patole has made big statement on mergers. His party is warming up to merger idea with the Congress. Patole says like-minded parties must unite to save democracy. He also says BJP breaking up parties. So that's a big statement coming in from Nana Patole. He says parties are warming up to merger idea with the Congress. There have been speculations that TMC may be merging or tying up with the Congress. He goes on to say like-minded parties must unite to save democracy, and also going on to say that BJP is breaking up her parties. Let's listen in to what he has said.
1: बीजेपी का ऑलरेडी पहले ही प्रस्ताव था विलीन करना का, तो ऑलरेडी अभी सबको ये लगता है कि इस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्य की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है, और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने देखा होगा, अपन महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में शरद पवार के घर को तोड़ा गया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीजेपी ने तोड़ा, ये तो सबको पता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ा, तो जिस तरह से राजनीति बीजेपी ने करना शुरू करी है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानना नहीं चाहते, वो हिटलर शाही हुकुमशाही जिस तरह से लाई जा रही है वो अपने लोकतंत्र में हिंदुस्तान में देख रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस में भी जिस तरह से चल रहा है, उनके पूरे टुकड़े टुकड़े करने का काम शुरू है, तो बीजेपी कर रही है। तो किस तरह से दबाव लाते, कैसे ईडी का दबाव लाते, कैसे सीबीआई का दबाव लाते, अब देश के लिए कोई नई बात नहीं हुई है। लोग कोई खुशी से इनके साथ नहीं जाता, दबाव के आधार पर वो लोगों को लेके जाते हैं। ऐसे आपने कई देखा है, जिनको पर आज जैसे जैसे कई मुख्यमंत्री इनके है, जैसे असम के मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो बनाए अभी बीजेपी ने, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद मोदी जी ने लगाया है, उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया। तो वॉशिंग मशीन की जो बात चलती थी हिंदुस्तान में, तो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं लोग।
0: We're joined by Sujata on this. Sujata, this is a big statement made by Nana Patole amid rumors of several of the parties, including the TMC, perhaps wanting to join hands with the Congress party. Of course, that had been dismissed by some of the senior leaders. Yet, Nana Patole, they're saying that many of the like-minded parties want to merge with the Congress party. And he's also sort of encouraging several of these parties to come forward, saying,

0: गया अभी,
1: बस फेल हो गया है।
2: नहीं, ऑपरेशन लोटस तो होगा। अच्छा, हाँ होगा, किसी तरीके से भी होगा। आप देखो लिस्ट जो दी है, पहले 8 अलग इंक में, उसके अलावा कोई माना नहीं। 5 फिर एमपीओ को घर में, पहले तो जो मान गए उसको 5 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया, और किसी ने कहा हमको साहब 10 लाख रुपया महीना दे दीजिए 36 महीने तक, वो भी डील हो गई। जो माने नहीं उसमें से कई फर्स्ट टाइमर थे, उनके घरों से सिक्योरिटी हटा दी गई, उनके घर में उनका सिक्योरिटी हटा दिया, होमगार्ड हटा दिया, जैसा मेरा हटा दिया, उनको पीटा गया, बीजेपी वाले अंदर गए, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा, मारा पीटा परिवार वालों को किया, उन्होंने आके साइन किया। आप देख लो नेक्स्ट लिस्ट है 14 से 18, उसमें 3 मुसलमान हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं जाने दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कल्याण बैनर्जी देखिए भावुक आदमी है, उनकी बात हुई है, बट दीदी के ऊपर छोड़ दिया, बात सेटल हो चुकी है ऑलरेडी, बात खत्म हो चुकी है।
3: कीर्ति आजाद देयर वन ऑफ द एमपीस ऑफ द लोकसभा इन द तृणमूल हु स्टिल हैवंट साइंड एनी लेटर विद द रेबल्स सेइंग दैट दिस इज ऑपरेशन लोटस व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट। ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार हु इन फैक्ट इज आल्सो एन एमपी ऑफ द बीजेपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द तृणमूल, दीस आर ऑल देयर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस व्हिच आर नाउ कमिंग टू द फोर। इन fact, in the letter that has been accessed by NDTV, Kakoli Ghosh Dastidar has been named as the chief whip. The deputy leader is Shatabdi Roy. And then you've got others. The 3 Muslim MPs that Kirti Azad there was referring to, of course, are the 3 MPs who come from Murshidabad. And the breaking news is that Sukanta Majumdar has now spoken of the beginning of the end of the Trinamool Congress. Internal contradictions, dissatisfaction with the leadership, says Sukanta Majumdar, is the reason why you see more and more MPs, MLAs from the Lok Sabha, from the Rajya Sabha, speaking up. Listen.
4: See, the rift in between the members of TMC, especially in the MPs, now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power.
3: All right, so very quickly to recap for our viewers, the 19 names accessed by NDTV, Kakoli Ghosh Dastidar, Shatabdi Roy, Bapi Haldar, Sharmila Sarkar, Prasoon Banerjee, Jagdish Basunia, Asit Kumar, Arup Chakravarti, and surprisingly also people like June Malia, Yusuf Pathan, and Deepak Adhikari, who so far were believed to be loyal to Didi, to Mamata Banerjee, and not be in the rebel group. Fast developing story. We'll keep a close eye. Time now for a very quick break.

0: NDTV has accessed the full list of all rebel Trinamool Congress MPs, Kakuli Das, Shatabdi Roy, Yusuf Pathan, Sharmila Sarkar, June Malia are the signatories in that list, which was submitted to the Speaker. There are currently 19 signatures on the document and not 20. One slot at serial number 13 has been deliberately left vacant, with sources claiming a significant political figure could still join the rebel camp. At the heart of the rebellion is growing anger against Abhishek Banerjee, with several rebel leaders accusing him of arrogance and excessive control within the organization. Even as another MP exits and pressure mounts on the leadership, senior leaders like Shatrughan Sinha, Babul Supriyo and Pratima Mondal have rallied behind Mamata Banerjee, setting the stage for a high-stakes showdown within the Trinamool Congress Party. My colleague Padmaja Joshi exclusively spoke to Arup Chaudhary, whose name is also on that list.
1: Arup ji, तो 20 नाम अब हैं असली टीएमसी के पास, 20 नाम हैं।
2: यस, हम लोग सब सिग्नेचर करके दे दिया है।
1: आप ये बता पाए?
2: टू सेव द प्रेस्टीज ऑफ द टीएमसी, वी ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वी हैव साइंड ए पेपर एंड डिपोजिटेड टू द ऑनरेबल स्पीकर एंड वन टू डिमांड to allotment our seats. इकट्ठा हम बैठ के हम बात कर सके, चर्चा कर सके, सरकार का काम आगे बढ़ाने सके, ठीक है ना? हम सब एक मिल के करने चाहता है काम, कि डबल इंजन का सरकार से कैसा काम बढ़ता है वो हमको देखना है।
1: अच्छा, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अब बीजेपी में हिस्सा बन जाएंगे, आप सब बीजेपी का हिस्सा होंगे, आप एनडीए का हिस्सा होंगे?
2: नो, टीएमसी का काम करेगा, बीजेपी का काम करेगा, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम दोनों मिलके एक काम करेगा। इफ रिक्वायर टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करेगा, इफ रिक्वायर बीजेपी हमसे मदद मांगेगा हम भी सपोर्ट करेगा, मिलजुल के हम काम करेगा।
1: ओके, लेट्स टेक दिस वन बाय वन। मिस्टर चक्रवर्ती, व्हेन डिड यू साइन दिस लेटर?
2: बिफोर 3 or 4 days. I am admitted at hospital. I am not getting any chance to appear there in the meeting. But when I came to know that our Honorable Chief Minister is coming from Calcutta to meet with the MPs, then I take 2 hours time from the hospital authority and meet with them, with Shubhendu Adhikari and other leaders and other MPs, and sign on the paper.
1: You're saying you signed this letter 3-4 days ago. We were being told that this has been signed on the 18th of May. Can you please confirm that?
2: Pardon?
1: We were told that this letter had been signed on the 18th of May. Can you please confirm to us exactly when did you put your signature on this letter?
2: हमारा 8 नंबर में नाम था, नंबर 8।
1: आपका जी, आपका 8 नंबर पे नाम है, आपने 4 दिन पहले ही अपना नाम डाला है इस चिट्ठी पे?
2: सेकंड डे। हाँ,
1: अच्छा, 4 दिन पहले आपने डाला। आपने स्पीकर को कर दिया?
2: ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी हैव साइन मिनिमम 16 to 18 नेम्स।
1: When did you give this letter to the Speaker, to the Lok Sabha Speaker?
2: We have signed the papers and handed over to our leader, that is Kakoli Ghosdoste.
1: Okay.
2: Okay.
1: Can you confirm if it has been given to the Speaker yet?
2: On that time, Mr. Shubhendu Adhikari also with us, the Chief Minister of West Bengal, Honorable Guest. We will meet with him also and discuss it, okay, and fight. Okay.

0: here is that whatever the origins, she
1: Indian shooting legend and national coach Jaspal Rana passed away at the age of 49 in a Delhi hospital. Rana had recently undergone a stent procedure after suffering chest pain during the ISSF World Cup in Munich and again while returning to India. One of India's greatest shooters, Rana won multiple gold medals at the Commonwealth and Asian Games and was a world champion in the junior category. In recent years, he played a pivotal role in shaping India's next generation of shooters. Rana was widely credited with guiding Manu Bhakar's rise to the top of world shooting. Under his mentorship, Bhakar won 2 medals at the Paris Olympics, making him one of the architects of India's modern shooting success. His death marks a huge loss for Indian sport, with tributes pouring in from across the sporting fraternity as well. This has been a huge setback. Manu Bhakar, of course, is one of his students and has accomplished so much under the guidance of Rana. And this news has come as a huge setback to the sporting fraternity. This news came in this morning under his mentorship, remember. Bhakar won 2 medals at the Paris Olympics, making him one of the architects of India's modern shooting success. His death marks a huge loss for the Indian sport. A lot of people from the fraternity expressing their condolences for Jaspal Rana, who died at the age of 49. And he had some procedures done earlier this year as well. And then came the news of the loss. All right, we have some breaking news also coming in, and this has to do with the Trinamool Congress. We're being told at this moment that the speaker will be meeting with the Lok Sabha. The Lok Sabha speaker, rather, will be meeting with the Rebel TMC MPs. That's the latest that we have for you. The Rebel TMC MPs have been waiting for a couple of days now to meet with the Lok Sabha speaker, Om Birla. But now that is to happen. This comes after we have also accessed the list of the Rebel TMC MPs, where there are 19 names. Sources also telling NDTV a 20th name could be added to that list, and that could happen in the next couple of days. But the big development at this hour is that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha speaker on Monday. Is the correction there, is when they're going to meet them. Very soon, our reporter will be joining us on the big story. But this is something that the Rebel TMC MPs had been waiting for. Earlier this week, the Lok Sabha speaker was not in Delhi. That was one reason why they couldn't meet them. But now, with that list firming up, and we have Aishwarya live with us. Aishwarya, what's the latest you can give us on this breaking news emerging? We're being told Monday is the day that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha speaker.
2: Well, in fact, one of the Rebel Trinamool Congress MP, Jagdish Chandra Basunia, is with me. We will directly ask him, sir, Monday ko samay de diya gaya hai Lok Sabha speaker ki taraf se, aap milne wale hain tamam?
3: Monday ko milne wale.
2: Aap se ye janna chahenge ki jo list aayi hai, jo signatures hue, wo kis tarike se hue, kya kuch process raha, kya kuch sansadon ka kehna hai, kya aapatti darj karai gayi, agar aap hamare darshakon ko bata sakte.
3: सब सांसद मिलकर हमें डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर का पास दावा रखेंगे. इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया.
2: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में, और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
3: नहीं, एकदम नहीं. हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे. इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है.
2: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया. 20 लोग आप बता रहे हैं कि
3: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा. क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है, वो बहुत ज़्यादा पता है हमारा मन में खूब पसंद हुआ, इसलिए जो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा और हमको जो डिमांड है उसका पास हम वो डिमांड रखेंगे और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
2: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं वो लोगों को थ्रेटन किया गया, उन लोगों पर प्रेशराइज कर उनसे सिग्नेचर कराया गया, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की
3: कीर्ति आज़ाद जो बोल रहे हैं ना वो तो बिहार का आदमी है, वो तो बंगाल में नहीं है, वो जानते नहीं इलेक्शन का बाद हमारा इलाका में कितना आदमी घर छोड़ा है, कितना आदमी का घर तोड़ा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है, हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है, हर दिन 200-300 लोग हमको फ़ोन किया है, दादा हमारा लिए कुछ तो करो, हम कब घर जाएंगे, हम कब लौटेंगे हमको परिवार का साथ, तो इसलिए हमको मन में दुख है, कीर्ति आज़ाद के मन में कोई दुख नहीं, वो तो बिहार के रहने के लिए है, वो तो वर्धमान में नहीं रहता है क्योंकि वो बीरभूम में नहीं रहते हैं, तो जानते क्या है जो इलाका में रहता है उसको जानता है इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है वो हम जानते हैं, कीर्ति आज़ाद नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है, इसलिए वो बात बोलना।
2: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
3: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है,
2: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए।
3: हाँ, पहले दिन सायनी आया है, मिताली आया है, मालार आया है, हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना बनर्जी।
1: Come Monday, you could see huge political realignments also taking place. We're going to leave you with that breaking news that the Rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha Speaker on Monday. Sipping to short breaks, news and updates will continue in moments from now. Stay tuned to NDTV.

0: rebel TMC MPs will be meeting with the Lok Sabha Speaker on Monday, according to sources. The rebel MPs and the LS Speaker will be meeting. These are 19 rebel MPs who are likely to meet the Speaker. And that's the latest that we have for you. These MPs, of course, rallying against Abhishek Banerjee, Mamata Banerjee. We have accessed the letter of those 19 signatories. We've brought you the names of the signatories as well. But the big breaking news coming in at this hour is that these MPs will be meeting with the Speaker. All eyes will be on the next move by the Lok Sabha Speaker on Monday. These rebel TMC MPs want another faction to break out of the TMC, but also claim that the real TMC MPs, they're the real party and representatives of that real party. Let's listen in to reactions coming in on that big story.
1: One of the rebel Trinamool Congress MP Jagdish Chandra Basunia is with me. We will directly ask him, sir, Monday ko samay de diya gaya hai Lok Sabha Speaker ki taraf se, aap milne wale hain tamam?
2: Monday ko milne.
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है, जो सिग्नेचर्स हुए, वो किस तरीके से हुए, क्या कुछ प्रोसेस रहा, क्या कुछ सांसदों का कहना है, क्या आपत्ति दर्ज कराई गई, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें.
2: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर का पास दावा रखेंगे. इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया.
1: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में, और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करें?
2: नहीं, एकदम नहीं. हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे. इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है.
1: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया. 20 लोग आप बता रहे हैं कि
2: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा. क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है, वो बहुत ज़्यादा पता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ. इसलिए जो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा, और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे. और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा.
1: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद से हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बागी सांसद हैं वो लोगों को थ्रेटन किया गया, उन लोगों पर प्रेशराइज कर उनसे सिग्नेचर कराया गया. आपको क्या लगता है कि इस तरीके की
2: कीर्ति आज़ाद जो बोल रहे हैं ना, वो तो बिहार का आदमी है, वो तो बंगाल में नहीं है. वो जानते नहीं इलेक्शन का बाद हमारा इलाका में कितना आदमी घर छोड़ा है, कितना आदमी का घर तोड़ा है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है. हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है. हर दिन 200-300 लोग हमको फ़ोन किया है, दादा हमारा लिए कुछ तो करो, हम कब घर जाएंगे, हम कब लौटेंगे हमको परिवार का साथ. तो इसलिए हमको मन में दुख है, कीर्ति आज़ाद के मन में कोई दुख नहीं. वो तो बिहार के रहने के लिए है, वो तो वर्धमान में नहीं रहता है, क्योंकि वो बीरभूम में नहीं रहते हैं. तो जानते क्या, जो इलाका में रहता है उसको जानता है, इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है, वो हम जानते हैं. कीर्ति आज़ाद नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है, इसलिए वो बात बोलना.
1: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
2: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है.
1: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर्स किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए?
2: हाँ, पहले दिन सावनी आया है, मिताली आया है, मालार आया है. हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना बनर्जी, यूसुफ पठाना.

0: अब यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे अपने 14 साल के बेटे को, किस तरीके से आप याद करते हैं आज अपने बेटे को?
1: अभी तो लगते याद क्या करने का, अभी खाने नहीं आता है, पीने नहीं आते हैं। पहले सब साथ में बैठते खाते थे पीते थे, अच्छा लगता था। अभी वो ऐसा है कि यहाँ पे दिखता है, सामने सामने रहता है, लेकिन आता नहीं है, पास में कुछ मंगाता नहीं है।
2: On that note, we're slipping a short break. News and updates will continue on the other side. Stay tuned.

कितना आदमी का घर तुरा है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बंगाल में नहीं रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता है। हम जानते हैं कितना दुख हमारा होता है।

0: में नहीं रहते हैं तो जानते क्या है, जो इलाका में रहता है उसको जानता है इलाका का सिचुएशन क्या है, लोग का डिमांड क्या है, लोग क्या चाहता है वो हम जानते हैं कि इत्यादत नहीं जानते हैं, वो दूसरे वाला जगह में रहने वाले लोग नहीं जानता है, इसलिए वो बात बोलना।
1: आपने कब सिग्नेचर किया सर?
0: हम पहले दिन में किया है, जो दिन सिग्नेचर हुआ है उस पहले दिन में हम किया है।
1: फिर उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई और भी सिग्नेचर्स किए गए, ऐसे नंबर्स बढ़ते गए?
0: हाँ, पहले दिन सायनी आया है, मिताली आया है, मलार आया है। हम पहले दिन 14 लोग था, उसके बाद रचना बनर्जी, यूसुफ पठान आया, मलार आया, सायनी घोष आया और दो चार जन बाद में आया।
1: एक सवाल यहाँ पर खड़ा भी हो रहा है कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं, दो तिहाई नंबर?
0: पहले वाला जो काम है स्पीकर का, वो घुटने का जो दाबी, उसका दाबी पूर्ण होने का बाद हम दूसरा काम करेंगे। पहले तो एक काम हम स्पीकर का पास जो चिट्ठी भेजा है वो चिट्ठी अगर मान्यता हमको मिली तो हम दूसरा काज में जाएंगे।
1: नाराजगी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से रही है क्या?
0: ज़्यादा से ज़्यादा नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज जो जगह में गया है तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है। अभिषेक बनर्जी हुआ कैसे हुआ, ममता बनर्जी अगर उसका सपोर्ट नहीं दिया तो अभिषेक, आज को अभिषेक होना होता नहीं होता। तो ये ममता बनर्जी अंधो धृतराष्ट्र को तरफ काम किया है, भतीजा जो कुछ करता है ममता बनर्जी देखता नहीं है, इसलिए पार्टी का हालत ये खराब हुआ।
1: क्या और भी सांसद आप लोगों के टच में?
0: देखा जाएगा, दो चार दिन के बाद फिर कोई सांसद आएगा तो जरूर आएगा।
2: And my colleague Padmaja Joshi also spoke to Arup Chakrabarti, whose name is also on the list of rebel MP. She asked him, when did he sign this list? Listen into what he said.
3: Arup ji, to 20 naam ab hain asli TMC ke paas, 20 naam hain.
4: Yes. Hum log sab signature karke de diya hai. Samjhe na?
3: Aap ye bata paye?
4: To save the prestige of the TMC, we all elected members of the parliament, we have signed a paper and deposited to the honorable speaker and one to demand to allotment our seats. Ekatha hum baith ke hum baat kar sake, charcha kar sake, sarkar ka kaam aage badhane sake, theek hai na? Hum sab ek mil ke karne chahta hai kaam, ki double engine ka sarkar se kaisa kaam badhta hai wo humko dekhna hai.
3: अच्छा, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अब बीजेपी में हिस्सा बन जाएंगे, आप सब बीजेपी का हिस्सा होंगे, आप एनडीए का हिस्सा होंगे?
4: नो, टीएमसी का काम करेगा, बीजेपी का काम करेगा, और द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम दोनों मिलके एक काम करेगा। इफ रिक्वायर टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करेगा, इफ रिक्वायर बीजेपी हमसे मदद मांगेगा हम भी सपोर्ट करेगा, मिलजुल के हम काम करेगा।
3: Okay, let's take this one by one, Mr. Chakrabarti. When did you sign this letter?
4: Before 3 or 4 days. I am admitted at hospital. I am not getting any chance to appear there in the meeting. But when I came to know that our Honorable Chief Minister is coming from Calcutta to meet with the MPs, then I take 2 hours time from the hospital authority and meet with them, with Shubhendu Adhikari and other leaders and other MPs, and sign on the paper.
3: You're saying you signed this letter 3-4 days ago. We were being told that this has been signed on the 18th of May. Can you please confirm that?
4: Pardon?
3: We were told that this letter had been signed on the 18th of May. Can you please confirm to us exactly when did you put your signature on this letter?
4: Hamara 8 number mein naam tha. Number 8.
3: Aapka ji, aapka 8 number pe naam hai. Aapne 4 din pehle hi apna naam dala hai is chitti pe.
4: Second day, ha.
3: Achha, 4 din pehle aapne dala. आपने स्पीकर को कर दिया
4: on that particular day we have signed minimum 16 to 18.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: The news.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: The news, Ayush. Since when do we do

0: All right, starting off some breaking news. Ram Mohan Naidu has now issued a statement on 1 year of AI 171, a crash anniversary. He said, and I quote him here, "Today, as we mark 1 year since the tragic Air India flight AI 171 accident, we remember with profound sorrow those who lost their lives and extend our heartfelt condolences to their families and loved ones. The investigation continues with diligence and professionalism in accordance with established national and international procedures. We remain committed to a thorough and objective determination of the causes of the accident and to further enhance aviation safety." I'm going to go across to my colleague Vishnu for more on this. Vishnu, 1 year since the AI 171 crash, of course, there are various questions that still remain unanswered. We have the aviation minister there saying that the probe will continue according to national and international standards.
1: Well, what I can tell you is that this comes as a huge disappointment. Certainly, it will be a disappointment to the families of those who've lost so much. Remember, 260 people were killed in the crash of AI 171 1 year ago. There was an expectation that there would be a final report which would be presented by this time, and if not that, then perhaps a preliminary report. There's already been one preliminary report. There was an expectation that in the absence of a final report, there would certainly be another preliminary report. But all that we have right now by way of justice and transparency and information is a two-paragraph tweet by the Civil Aviation Minister, who, besides anything else, says that the investigation continues with diligence and professionalism in accordance with established national and international procedures. We remain committed to a thorough and objective determination of the causes of the accident and to further enhancing aviation safety. I dare say this doesn't offer the closure that many of the families who've been impacted by this crash would be looking for. There should have been perhaps much more by way of information shared with people around the world. This is being closely observed, not just in India, but indeed across the world. It involves aviation safety, involving the Boeing 787 Dreamliner, the maintenance practices of Air India, and potentially the role of the pilot or one of the two pilots on board the aircraft. There have been various theories. But at this stage, 1 year later, despite the fact that there has been so much information by way of the electronic flight data recorders, which transmitted information, which recorded information, we still are no clearer to getting a final answer on what resulted in the crash of AI 171.
0: Right, absolutely, Vishnu. Thanks for sharing the crucial update here with us. All right, trouble mounts for Mamata Banerjee as rebellion grows in her party. As per the sources, rebel TMC MPs might meet Lok Sabha Speaker today. Meanwhile, NDTV has accessed the full list of Trinamool Congress MPs in the rebel camp. Well, Kakoli Ghosh Dastidar, Satabdi Roy, Yusuf Pathan, Sharmila Sarkar and June Malaya, they all are among the signatories in the list submitted to the Speaker. There are currently 19 signatures on this document, 19 rebel leaders of TMC. One slot at serial number 13 has been purposely left vacant, with sources indicating that a major political figure could still join the rebel camp. Well, at the heart of the rebellion is growing anger against Abhishek Banerjee, with several rebel leaders accusing him of arrogance and also excessive control of the organization. And one of the main person who's against Abhishek Banerjee is, of course, Didi Loyalist Kalyan Banerjee, who came out yesterday and said that Abhishek thinks he is a king. Listen to all the reactions that are coming in as the TMC mass exodus only continues.
2: आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लिस्ट आई है, जो सिग्नेचर्स हुए, वो किस तरीके से हुए, क्या कुछ प्रोसेस रहा, क्या कुछ सांसदों का कहना है, क्या आपत्ति दर्ज कराई गई, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें।
3: सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर को पास जाएंगे और अलादा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलादा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर का पास दावा रखेंगे। इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया।
2: एक अलग गुट बनाएंगे और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट देंगे लोकसभा में, और आप तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी फैक्शन के सांसद हैं, तमाम जो लोग हैं, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं पसंद करेंगे?
3: नहीं, एकदम नहीं, हम अलग बैठेंगे, अलग गुट से हम बैठेंगे, इसलिए तो हम स्पीकर का चिट्ठी दे दिया है।
2: जगदीश जी, ऐसा क्या रहा कि इलेक्शंस के बाद ये निर्णय किया गया? वेस्ट बंगाल में देखें तो MLAs दूर हो गए, लोकसभा में देखें तो सारे MPs ने ये फैसला लिया, 20 लोग आप बता रहे हैं कि फैसला।
3: देखिए, पहले जो इलेक्शन का बात, हमारा जो बंगाल में जो CM है शुभेंदु अधिकारी, वो जो काम कर रहा है, अभी तक जो काम किया है एवं अगले दिन में जो काम किया है, ये हमारा मन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि CM अभी बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जितना सोचता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हमारा मन में खूब पसंद हुआ, इसलिए बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा। और हमको जो डिमांड है उसका पास, हम वो डिमांड रखेंगे, और ये डिमांड पूरी करने के लिए वो शुभेंदु जी ने हमको साथ बैठा है, वादा किया है, हमारा जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा और इलाका के डेवलपमेंट के लिए जो काम है वो करेगा।
4: अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी।
5: स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। आज की सबसे मनोज्ञा बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक है क्या?
6: मेरा ख्याल है सब ठीक है, और आपको ज्यादा पता होगा, आप मीडिया वालों से बहुत ही मीडिया ने उछाला है, बहुत ही सुना है, जांचा है, पड़ताल किया है, पता लगाया है, मुझे लगता है आपको पता होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी का नेतृत्व बना हुआ है, और ममता बनर्जी के गुट में यानी उनकी पार्टी में जो हो रहा है, मेरा ख्याल है फिल्टरिंग हो रही है, अच्छा ही हो रहा है, बढ़िया के लिए हो रहा है।
5: आप साथ में हैं दीदी के और रहेंगे भी आगे क्या?
6: मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, मैं दुख सुख में साथ देता हूं। जिन लोगों ने मेरी मुसीबत की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, जब मुझे 2019 का चुनाव जो मैं हराया गया था, जैसा लोगों को पता है, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। सबसे पहले ये देश की सबसे कद्दावर, लोकप्रिय और ये टाइग्रेस ऑफ बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सामने आई थी मेरी हौसला अफजाई करने, और साथ ही साथ मुझे जोर दिया कि भैया के चुनाव लड़ूं आसनसोल से, जहां मैं आज तक कभी नहीं गया था, और देश में एक ही उपचुनाव था, वहां जब गया मैं तो पहली बार में ही रिकॉर्ड मतों से जीता था, आप सबों को पता है। तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में भी वहां पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। इसलिए मैंने 3-line whip अपने आप की तरफ से इशू किया है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था, और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं।
7: साइनी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले, वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, आज अखबार में देखा कि वो दिल्ली से तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा, और क्या बोल सकते। ये सब नाटक है, अगर ममता बनर्जी के साथ रहना है तो रहो, अलग साइन क्यों कर रहे हो, स्पीकर के पास क्यों जा रहे हो, अमित शाह के पास जाने के बाद क्यों कर रहे हो, ये दुखलापन सही नहीं है।
8: इस्तीफे के बाद ही सीधा मैं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा से मिली, उनसे अच्छी बातचीत हुई, मैंने पहले भी कहा। तो अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो तो पार्टी का निर्णय होता है, मैं अकेले तो वो निर्णय ले नहीं सकती, पर आसाम में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, आपने देखा है कि जिस तरह का मैंडेट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लोग तो बीजेपी के साथ ही, तो अगर पार्टी में रह के काम करना है, पार्टी को ही नहीं ज्वाइन करके काम करना है, काम सरकार के साथ ही करना है।
9: आज एक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ है सुखेंदु से कर रहा है। दादा, आपने पहले दिन जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन कहा था और लोग भी छोड़ेंगे, तो आपकी बात तो लगता है सही साबित हो रही है।
10: मैंने तो पहले ही बोल चुका था 10 दिन पहले कि पार्टी उठ जाएगा, जैसे कि विधानसभा में हुआ हमारा बंगाल में, 80 चुनाव में जीता, 64 चला गया और उसका असर पड़ा लोकसभा में, अभी 22 मेंबर चले गए। तो मैंने तो पहले ही तय किया था कि मैं भी छोड़ दूंगा, पार्टी भी छोड़ दूंगा और राज्यसभा भी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, मैंने इस्तीफा दिया था 8 तारीख को, 10 तारीख को मतलब सुष्मिता देव, आज प्रकाश सिंह बारी, अब कल किसका बारी है, परसों किसका बारी है, देखते रहिए।
9: तो आपको लगता है कि भाई और लोग भी इसमें से निकलेंगे?
10: हाँ,
9: इस जहाज को और लोग छोड़ेंगे?
10: जरूर, ये जहाज तो डूब गया, तो जान बचाने के लिए तो लोग तो निकलने का कोशिश करेगा ना, निकलने का कोशिश करेगा,
9: तो और लोग भी निकलेंगे। अभी
10: जो लोग डूबते हुए जहाज में रह जाएगा वो डूब के मरेगा।
11: See the rift in between the members of TMC, especially in the MPs, now it has become widened, and as a result this kind of incidents are happening. And from the beginning the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power.
12: शुरुआत हुआ है और जितना अपराध हुआ है उनके जमाने में इन लोगों के द्वारा हुआ है, नीचे से ऊपर तो सब लोग लिखते हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है और जैसा तब से आएगा कार्रवाई होगा।
13: प्रूफ इज आउट इन द ओपन नाउ, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स 20 लोकसभा MP सिग्नेचर्स of the asli TMC under Kakoli Ghosh Dastidar's leadership. It shows that the asli TMC is different, and what Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee are representing, they are the nakli TMC. Similarly, in Vidhan Sabha also, almost 65-70 MLAs have formed the asli TMC. Raj Sabha MPs are also leaving. It is a complete implosion of TMC. It is now called Tukdo Mein Congress TMC. And this is happening because Mamata Banerjee was imposing bhatija over party. And because she is unable to put party first and she puts bhatija first, the party has moved away from her.
0: All right, so we've been bringing you up to date with all the TMC MPs, MLAs who are parting ways from the Diana party. Let's now tell you about another name. Her name, Sayoni Ghosh. You must have seen her on Instagram and everywhere else. She is from Didi Loyalist to now a rebel. So let's tell you more about Sayoni Ghosh and her profile. She's an actor turned politician. She joined TMC in 2021. And she also won elections from the seat of Jadavpur MP Lok Sabha in the year 2024. Now, Sayoni Ghosh is Trinamool Congress's most prominent young faces, and she is also a very close aide to Didi. Apart from that, she also made space as TMC's key spokesperson in various national debates, and she was also referred to as Choti Mamata Didi as well. Well, apart from that, NETV also exclusively spoke to rebel faction MP Satabdi Roy, confirming that TMC rebels have the magic number. Take a look.
14: When you people are going to, because you are the deputy leader in that faction, so when you are going to sit together next, whether it is going to be happen in the national capital or in Kolkata?
15: I think next session we get that separate block, but next meeting not yet finalized.
14: Did Mamata Banerjee try to reach out in last couple of hours or even yesterday after this thing happened? Or did Mamata Banerjee or anybody from Mamata Banerjee's part try to communicate you, to convince you? No.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: Exactly 1 year ago, the sky over Ahmedabad became a nightmare that would forever haunt several lives. Hundreds of lives shattered in a single catastrophic flash. Air India Flight 171 tore through the BJ Medical College hostel complex. The physical scars of the disaster remain etched into the landscape. The gaping hole where the plane entered the building shows the impact of one of India's deadliest aviation disasters. Among the 260 people killed were Rajnikant and Pushpaben Darji, an elderly couple from Kheda who were flying to UK to meet their son. But fate failed this reunion. This was a couple that had never stepped foot outside Ahmedabad before that ill-fated day.
1: उनकी वाइफ थी
2: दोनों कपल कहाँ जा रहे थे वो लोग
1: लंदन घूमने जा रहे थे लड़का इनका वहाँ पे डॉक्टर है अच्छा। तो घूमने बुलाया था पापा आप आ जाओ अच्छा। और उसने टेलरिंग करके दर्जी काम करके डॉक्टर बनाया था उसको अच्छा। घूमने बुलाया था जा ही नहीं सका
3: ऐसी प्रार्थना की बात तो हमें कुछ ही उसके पास हमें नहीं खुदा ने हमारी बात नहीं सुनी और मेरी बहन भी है और मेरी देवरानी भी हमारी छोटी बहन वो भगवान को नहीं अच्छा लगा दोनों को साथ ही ले गए
0: गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला वाज पासिंग बाय द रोड नियर द हॉस्टल व्हेन द प्लेन क्रैश्ड एन अनस्क्रिप्टेड मोमेंट ही नेवर ड्रीम्ड ऑफ हैपनिंग द 34-year-old फिल्म मेकर वेंट मिसिंग आफ्टर द क्रैश फैमिली फाइल्ड मिसिंग कंप्लेंट Cops traced his phone location to the crash site and then after 8 days, his body was identified through DNA matching.
4: तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेन क्रैश में आ जाएगा मेरा भैया फिर उसके दोस्तों से बात की तो उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बोला कि वो तो निकल गया था यहाँ से उसके बाद मैंने एक मेरा फ्रेंड था उसके पास मैंने लोकेशन निकलाई वो लोकेशन लास्ट पॉइंट आया मेघानी नगर का जो ब्लास्ट से 400-500 मीटर दूर था उसका लोकेशन तो उसने जो ब्लास्ट वाला एरिया था वहाँ से हमने एक्टिवा का इंजन नंबर 34 नंबर उसने निकाला वो साहब ने और वो मैच हो गया
5: हम बाप बेटे जैसे नहीं रहते थे हम दोनों दोस्त जैसे रहते थे कि वो उसकी एक तमन्ना थी कि पापा पहले मैंने नाम कमाना है
0: While victims continue to deal with the pain of losing their loved ones, in the June 12, 2025 crash, the chorus of justice grows stronger and the victims are searching for answers. The prelim report released by the Aircraft Accident Investigation Bureau in 2025 has hinted at dual engine shutdown, but did not assign blame to any individuals or point to a definitive cause.
6: टाइमिंग्स उन्होंने दिए हैं वो टाइमिंग्स जो इंजन कब फेल हुआ उसका और कैसे एक सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए तो उसका हमने खुलासा किया कि वो टाइमिंग जो टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर्स के पास वो उसके तहत नहीं है
0: One year on, the wreckage may have been cleared, but the scars remain etched forever. Bureau Report,